ट्रेडर्स यूनाइटेड मार्केट गली नंबर 3 बटग्रामना और द कप शॉप पे होल सेल तर ला सके। द देना अलावा एबी ट्रेडर्स ना डोसा कोला कोल्ड ड्रिंक और स्वीट सामान हम होल सेल रेट तर ला सके। प्रोप्राइटर कारी अब्दुल्ला रबते नंबर दे 0342-098-1857 और बल नंबर दे 0309-5029-246। कप शप पे नुम याद साते डबई सुर दे।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: हक्षविदा हेल्थ फाउंडेशन के पिके न होम रजिस्टर दा डी एच क्यू अस्पताल बडग्राम के बाद क्लिनिकल ट्रेनिंग होम दर कवले कीगी मजीद मालूम दपारा वर्टेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बडग्राम से तशरीफ रावड़े मुपत याद साथ वर्टेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिलमुकाबिल अल फकीर शॉपिंग मॉल नज पी एस ओ पेट्रोल पंप बडग्राम एम डी रहीमुल्ला यूसुफ जई सिब सरा पदी नंबर हम रबी तक कौली शे 0997-310-204
1: ग्रानो अवरिदुन को तसो आवाज अवरे द रेडियो अमन 88.4 बिट।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: ग्रानो औरिदुन को तासो आवाज आवरे द रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरी उसे।

0: विसरी उमरी दिल तलतंदी औ ताजी तद चू गुरी वाराणसी हेरा मंद नगो जी खुशाल अर्थ से नहीं भाई और कॉल तरह से गुरुमसर काल का उनके सुख देव तो कम जरे दे। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब ये सुख कम से ना
1: खबर कौन
0: ढेरे से तमने कुछ तो कहल गौलो तो हमारे टाइम से रनिश्ते दे मड़ा तब के रंगुन रखा के कहना बल में से जागले दी जी ताज वे जमा माय राय करा सीमा किरण अरूबा हानिया आयजा जोया हिना अलिशबा लाय बासिद्रा अनमोल केजा अंदलीब जिमल सानिया टोलू जिने को तो सलाम आया मैं अक्सा जानी अक्सा डेरे से तम मन न गो खुशल रहा उसे भाई दे वही बिलकाल बगे खुरु गुरु लाइन में सुख दे तो कम से नहीं अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हाय अल्लाह दस बल जने बिया दस जने कालो के जैसा सिग्नल पूरे भी खबर काल बजन सर वाखलू पर आयन मंदिर। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम
0: जी। ना बिया ले सुधा कम से ना
2: खरगाड़ी
0: खरगाड़ी ना
2: हाँ
0: नाम रहता खुला वाले जी
2: गाना
0: गाना वाला कुमा
2: सही
0: है डेरा मंद नगो दुजन खैसा देखियो के पहला हाफिज खजी खा गाने संग ओ बगे रास्तो में प्लेगी गाने बता सुन प्लेगी मन टेंशन वाले खा बल मैसेज आगले दी जी बेहतर खैसा हो कोर के तेर शो विजो सु मिल मनाई मां खुशहाल रहता हूँ सही आप एक काल तरह गुरु सर बल काल उनके सुख दे तो कम जाना दे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अजमा ख्याल दे दी बल तरफ बल काल वाखल मजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डेरा मंदना सबर दद तरीका माला राजी करना मड़ा।

है ना, देर मन ना को दी कार का बोलो। एनीवे जनाब जबा मैसेजेस करमा मैसेज बलहरा रवान दी।